कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती अनवता शब्द वाजंत तेरी रहाओ सहस तब नैन नन नैन है तोय को सहस मूर्त नायक तो ही सहस पद बिमल नानक पद गंध बिनु सहस तब गंध एव चलत मोही सब में जोत जोत है सोई तिसद चानन सब में चानन हुई गुर साखी जोत प्रगट हुई जोत इस भावै स्वार्थी हुए हर चरण कमल मकरंद लोग तुमनु अनदिनो मोहे आई प्यासा कृपा जल देहे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बो भरिया मिल साधु खंडल खंडा भी पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन वरल मंडल मंडा भी कर साधु अंजलि पुनवड्डा भी कर डंडौत पुनवड्डा ही रहाओ साकित कर साधना जानिया तने अंतर हो मैं कंडा ही ज्यो ज्यो चलवे तुभ दुख पावे जम काल सह श्री डंडा भी हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा ही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर मो सोभ खंड ब्रह्मंडा ही हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरी हर राख राख बड़ बड़ा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलो हर लाहा आ गए बसन सुहेला औद कटै दिन सरैना रे मन गुर मिल काज सवारे रहाओ इस संसार विकार संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी

अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूत है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है अलाह है अजह है अनंत है महंत है अलीक है नरसरीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अशूत है आलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है

चल भोगे चल राजे अटल साजे अखल धर्म कला कर्म सर्वम दाता सर्वम ज्ञाता सर्वम भाने सर्वम माने सर्वम प्राण सर्वम त्राण सर्वम भोक्ता सर्वम जोक्ता सर्वम देवं सर्वम पेवं सर्वम काले।

अभक्त हैं, विरक्त हैं, अनास हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलिख हैं, अदिख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटह हैं, अगह हैं, असंभ हैं, अगंभ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, आजाद हैं, चर पटशंत व प्रसाद। सर्वंहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राण सर्वंत्राण सर्वंकर्म सर्वंतर्म सर्वंयुक्ता सर्वंमुक्ता।

नात फिरियो लियसा समुद्रन लोग गयो पर लोग गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब है जिन प्रेम कियो तन ही प्रपायो काहू ले पाहन पूज तरियो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर आवाज जिदसा मैं काहू पिशाह को शीस निवायो को भुतान को पूजत है बस

हमरी दुष्ट का भव अपहाद मोहि बचा भव सुखी बसै मोरो परिवार सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिये सब बैरन को वास संगरिये पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम छाड़।

जो सदा हमारे पच्छासु जो करी हो रक्षा राख लो रखन हारे साहिब संसहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू बपतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सौ लोक सुवारा। नमस्कार है ताहे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो आदंते कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसी को हमारी। सकल प्रजा जिन्हें आप सवारी सेवकन को सागुन सुख दियो सतन को पलमो बंद कियो खटखट की अंतर की जानत भले बुरे की पीर पिशांत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखे सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पिशान खटखट के पट पट की जाने जब उद कर करा करतारा प्रजा तर तब दे अपारा। जब या कर कर तो कब हूँ तुम में मिलते तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारा है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही तेरे निरालम जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंबो आदा नीन अनाद संता कव मूड़ उचारत भेदा जाको भेम न पापत भेदा ताकव कर पाहन अनुमानत। महामूड कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिंत न भेवे आप अपनी बुद्ध है जेती वर्ण भिन्न भिन्न तो हे तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा के बिन सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहीं भूपांड जे से तजकीनी उत्पुज खान बहुर रचनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सिमरी सृष्टि दिखाए चंप हुया जुगाद स्वरूप सुयंप

सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री असुजा पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काल मन वांछत फल पावै सोई दुख न तसै व्याप्त कोई अड़िल।

कथ की करह कहानी, करह कहानी कथ केरी कित द्वारे, पाइये तन मन धन सब सौंप गुर को हुकम मनिये पाइये। हुकम मन्ने हो गुरु की रागा बहु सची बाणी, कह नाम सुनो संत हो कथे हो अकथ कहानी मन चंचला। चतुराई किने ना पाया

दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे।

किन में काड़े होए गए जितड़े माया भोग विच न कोई कर सकै किस थैरू में रोज कीता कछु न हो बई लिखिया तुर संयोग वडभागी मेरा प्रभ मिला तां उतरे सब वियोग नानक प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोज कत्तक हो बे साध संग बिनसे सबे सो मगर माहे सुहंदियां हर प्रसंग बैठड़ियां तिनकी सोभा क्या गणी जे साहेब मेलड़ियां तन मन मौलिया राम सिंह संग साध सहेलड़ियां साजना ते बाहरी से रहने अकेलड़ियां ते दुख न कबहू उतरे से जम के बस पड़ियां जिन राव्या प्रव्यापना से दिसन नित खड़ियां रतन जवेहल लाल हार कंठ तिना जड़ियां नानक बांछे धूड़ तिन प्रभ सरनी दर पड़ियां मगर प्रभ आराधना बौड़ न जन मड़ियां।

जाते उपजीता मिली सच्ची पी सुमाह कर गैलिनी पार ब्रह्मौर न विछड़ियाह बाहर जाऊं लख बेरियां हर सज्जन गाम्या गाह शरण पई नारायणे नानक दर पई आह पोख सुहंदा सर्व सुख जिस बख्शे वे परवाह माघ मजन संग साधु अतूड़ी करेशना हर का नाम त्याए सुन सवना नु करदान जन्म कर्म मल उतरै मनते जाए गुमान काम क्रोध न मोहिया बिनसे लोभ सुवान सच्चे मार्ग चलदिया उस्त करे जहान अठसर तीर्थ सगल पुन जी दया प्रवान जिसनू देवे दया कर सोई पुरख सुजान जिन मिलिया प्रभु अपना नानक तिन करवान बाग सुचे से कांडिये जन पूरा गुर मेहरवान फलगुण नंद अपार जन हर सज्जन प्रगटे आए संत सहाई राम के कर कृपा दिया मलाए सेज सुहावी सर्व सुख उन दुखा नाही जाए इस पुनी बड़ पागनी वर पाया हर राय मिल सैया मंगल गावही गीत गोबिंद लाए हर जे हाय अवर न दिसई कोई दूजा लवे न लाए हालत पलत सवारी उन्ने चल दितियन जाए संसार सागर ते रखियन बहुर न जन्मे ताय जेहवा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाय फल गुण नित सलाहिया जिसनु तिल लांत माय जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे हर गुर पूरा राधिया दरगह सच खरे सर्व सुखा निध चरण हर भौजल बिखम तरे प्रेम भगत तिन पाईया बिख्या नाहे जरे कूड़ गाए दुबदा नसी पूरन सच परे पार ब्रह्म प्रभ सेम दे मन अंदर एक तरे महादूप दिवस मूरत पले जिसको नदर करे

उद्धम सही कराए प्रभ मिल साधु गुण गाव दूजी जाए न सूजी किथे कूकण जाम अज्ञान बनासन तम हरण ऊचे गामे अमाम वन विछड़िया हर मिलिया नानक हे सुआ।